नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः।

वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य

अनंत कोटि प्रणाम्स एट द डिवाइन लोटस फीट ऑफ आर मोस्ट बिलवड भगवान. थैंक यू भरत बाला सर फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी नाउ कम टू द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ दिस फेस्टिवल. विथ योर परमिशन स्वामी, वी कमेंस द अवार्ड सेरेमनी ऑफ द श्री सत्य साई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. May I invite Srimati Himavahini Ratnakar and Srimati Kamala Pandya to kindly come forward and present the award for the best short film in the 16 to 22 years age category. And the award goes to Echoes of Love from the state of West Bengal.

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य